0: with a gray Honda CRV.
1: नहीं उसमें मतलब सबसे पहले आवाज नहीं आ रही, सबसे पहले गांड पड़ती है।

0: तो आपका ट्रिप पे जा रहा था अबाउट टेक ऑफ, अबाउट टेक ऑफ एकदम हिलने लगा। तो फिर उसने बोला कि उसने मेरे लिए सारे रन पे पहुंच दिए थे, जीरो सर का बाजू का 08 लेफ्ट खोल दिया था, कहीं भी कर। फिर मैंने ऐसे ही मैंने 26 राइट से कर दिया था और करके टैक्सी करके वापस आ गया। वो क्रिएट हो जाता है जहाँ पे उसकी वेपर्स है फ्यूल के, लेकिन फ्यूल नहीं जा रहा होता क्योंकि वहाँ पे वेपर्स होते हैं, इसका गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ करने लगता है।
1: Engine is squad 134, you can cancel. CHV is now giving updated location, West Avenue A at the 14, 130's area.
2: 134, copy.

0: 500. I'll be 98 info online 7.
1: बस वापस आते हुए मैंने मैकडॉनल्ड उठाया, मैकडी खाता हुआ आ गया। हॉट मैक्सिकन और मीडियम फ्राइज। किसने बोला ये तुमको? बकवास है। तुम ये भी तो देखो कि तुम इंडिया में, तुम यूएस में। वो साउथ अमेरिका वगैरह से आता है। ये छोड़ो, दुनिया के सबसे बड़े मीट कंज्यूमर जो अरब कंट्रीज है, वो लोग का अपना खुद का मीट नहीं है। वो लोग खुद साउथ अमेरिका, ब्राजील वगैरह से इम्पोर्ट करते हैं। जैसे सऊदी है, दुबई है, तुमको क्या लगता है? वो हर कोई वहाँ पे खाता है और जम के खाता है। क्या वो लोग अपना खुद का बनाते हैं या खुद का उतना बनाते हैं? कुछ नहीं है वहाँ पर। अगर इंडिया में एक चेक होता है तो यूएस में 10 चेक होते हैं फूड क्वालिटी वगैरह को लेकर, और जरा सा भी इधर उधर कुछ भी हो गया तो गार्ड मार देते हैं यहाँ पे।
2: Engine is squad 33, cancel response.
3: Engine 33, copy, thanks, AP.
1: $1 कम मतलब कमाएंगे, लेकिन कोई गलत चीज नहीं करेंगे।
0: छोटी सी चीज निकल आएंगी किचन पे, आपको मिलियंस ऑफ डॉलर का कॉम्पेंसेशन मिलता है।

0: को पता है कि तुम क्या किस इस पे जाओगी तो तुम्हारा वो होगा, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फॉलो करना है उसके बाद।
1: Revising code 4 now to our Del Mar and Garvey fires on scene handling. It's code 4, 1022. Any further code 3 is again shut down. Any further code 3 to Del Mar and Garvey. 52 Frank and 5300 copy. Number 5300 copy.
0: इसको आप टर्न करेंगे तो 344, राइट, 344 टर्न करके फिर उसका
2: इंटरसेप्ट करेंगे,
0: उसके बाद 344 रेडियल को फॉलो करेंगे,
2: मेंटेन करेंगे,
0: राइट, जब तक ये नहीं
2: आता,
0: ये डिवेल सेंटर, यस, इस डेट ये बेगसविल लुक साइड, और राइट, 4290 फॉलो करो और इंटरसेप्ट करो। तुमको ये और अपना हेडिंग और वो सब देख के करना है, ठीक है, ओ भाई, और ये भी क्या, फ्लाइट को बताएगा ना तुमको, तुम्हारे को कहाँ जाना है, डिसीजन ऑल्टीट्यूड एंड डिसीजन ऑल्टीट्यूड पे तुम्हारा नहीं हुआ कुछ, डिसीजन ऑल्टीट्यूड क्या है तुम्हारा, 700 इज योर डीए, डीए पे आके तुम डिसाइड करोगे कि भाई तुमको कंटिन्यू करना है, अप्रोच करना है या नहीं करना।
3: Copy requesting med team.

मतलब प्रोस्पेक्ट इसीलिए होता है कि दैट इज योर फाइनल पॉइंट टू फिक्स और टू स्टार्ट एन अप्रोच लाइक सॉरी टू लाइक उस पॉइंट तक तुम्हारा एयरक्राफ्ट पूरा स्टेबल हो जाना चाहिए. तो बेसिकली तुम कहीं पे भी हो, मतलब अप्रोच में तुम यहाँ पे भी हो या यहाँ पे भी हो, डजंट मैटर, तुम्हारा ग्लाइड स्लोप कहीं और भी है चलेगा, तुम्हारा लोकलाइजर कहीं और भी है चलेगा. बिफोर यू हिट फाइनल अप्रोच कोर्स, फाइनल अप्रोच पे तुम्हारा ग्लाइड स्लोप और तुम्हारा लोकलाइजर भी है सेटल. अगर नहीं है दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन दी अप्रोच. सो फाइनल अप्रोच पे से पहले यू हैव टू बी स्टेबल ऑन दी अप्रोच. ठीक है, ओके.

0: हमारे लोग लाइक मुस्लिम कहते हैं कि भाई यू नो फोन में वो फ्लैग है जो दिखाता है कि दैट इज द प्रूफ की फोन वॉज क्लिप मैं चूती है लाइक हाउ द फक इज दैट लॉजिक तो साला हर हर प्लैनेट पे कोई ना कोई क्रैक होगा तो बैंड वो क्या वो हो गया हो गया था God. Even a star of God. Nowhere
1: no.
0: is mentioned that he was a star
1: yeah,
0: of God.
1: No,
0: he
1: was...
0: pray him as God. मेरे को रिफंड चाहिए मैं जीतू भैया के पास जाऊंगा या सोहेल सर के पास जाके रिफंड मांगूंगा जीतू भैया थोड़ी ना बिल करते मेरी फ्लाइट मेरी बिल करने वाला तो सोहेल सर है
1: उनको
0: जाके मांगूंगा
2: Copy that. Just confirm 500, only one down, correct?